सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नवा तुम सुद राम नाम सारस पीवे अस पंडित कह दे जा जीव हर की कथा हृदय वसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण स्मृत भुजै मो सुख मैं जाने असोल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा दे बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपै को नाम जो जो जपै तिसके

जो व्रता ऐसा ही दूत नान को पुर कैया जीवन मुक्त पार बम के सलेठा जत का रखे तसा तिना आपे कण क्रम जो प्रभाव सोई फन हो पसरु आपो अंतरंग लखन जाए पार बम की रंग।

कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बाम प्रणव उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपिश्वर होते हैं।

प्रबंध ज्ञानी कई कोड़ कल्पना कठोर कई कोड़ अभ्यगा तमने कोर कई कोड़ पर तर को है कई कोड़ पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमा है कई कोट प्रदेश प्रमाए जिज लाओ तितर नार करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सुर नखत्र कई कोट देवदान इंद्र सरशतर सब समोरी अपने सुतारे नान जज पावे तेत निस्तार कई कोट राजस्व काम सात कई कोट वेद प्रसमृता शास्त्र कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए चल जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जकर प्रसाद कई कोट भूत प्रे शुक्र मृगात सब ते नेरा सो ते दूर नानका फलिपत रया परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरसुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बहुत जोनी फिर है कई कोट बैठते खाएं कई कोट कहले था।

होय पंडित करे बखियान, कबू मोहन तारी लावे ध्यान, कबू तर तीर्थ स्नान, कबू से साधन हो ज्ञान, कबू की रस पतंग हो जियान, कजोर पर में परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रपावे तमन चावे, जो स्पावे सो ही हो।

भाव लश्कर मान खूब पर करे आस पल पीतता का होए विनाश साते आओ जाने बलवंत खेर में होए जाए पसमन किसी न बदे आप अहंकारी धर्म राय तस्करे खुआरी।

जे सिमरन करै तू केल, दीपक बांध धरियो बिनतेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेकाडी ले मार। जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राखो तार, गुरप्रसादी उतरै पार। जे सिमरन नाही तोहे कान, मंदर सोवै पटंबर तान, से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू आंदन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए, सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइए संजोग। जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार, कहे कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत न मंत। राम करी कर दूजा बाणी, कबीर जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया, मुक्तै गुर अनल बुझाया। जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत ओन मानो रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ। उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसी ले गगन मझारंग, बेदी अले चक्र पयंगा, पेटी अले राय नसंगा, चूकी अले मोह मयासा, सस कीनो सूर गिरासा, जब कुंभक भरपुर लीना, तह बाजे अनहद बीणा। बगतै बग शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया, कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग। चंद सूरज दोय जो स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर तरिया पसार। रहाओ हीरा देख, हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजना लेख। दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत हौरे पाई, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई। रहाओ नींब पयो आंब, आंब पयो नींबा, केला पाका चार, नाली एर फल से बरपाका, मूर्ख मुक्त गवार। हर पयो खांड, रेत में बिखरियो, हस्ती चुन्यो ना जाई, कह कमीर कुल जात पाता, जो चीटी होए चुन खाई। बाणी नाम देव जियो की, राम कली कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। आनी ले कागद, काटी ले गुडी, आकाश मदे भरमी अले, पंच जना स्यो बात बतौआ, चीत सो डोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कला चित मांडी अले। रहाओ आनी ले कुंभ, भराई ले उदक, राजकुमार पुरंदरिये, हस्त बिनोद विचार करती है, चीत सो गागर राखी अले। मंदिर एक द्वार दस जाके, गऊ चरावन छाडी अले, पांच कोस पर गऊ चरावत, चीत सो बछरा राखी अले। कहत नाम देव सुनो तिलोचन, बालक पालन पौडी अले, अंतर बाहर काज विरोधी, चीज सो बार कराखी अले। वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कवित ना गावो गो, अखंड मंडल निरंकार, मैं अनहद वेद मजाओ गो। बैरागी राम गावो गो, शब्दातीता नहद राता, या कुल कह कर जाओ गो। रहाओ एड़ा पिंगला और सुख मना, पौने बंद रहाओ गो, चंद सूरज दोय समकर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देखना जल में पैसो, जी जंत ना सतावोगो। अड़सठ तीर्थ गुरु दिखाए, कठी पीतर नाओगो, पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहावोगो। नामा कह चित हर स्यो राता, सुन समाध समाओगो। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कमन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ
चांद ना होता सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अगन दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भदान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जो गोदावर जाइय, कुंभ जो केदार नहाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जो तीर्थ करै, तन जो हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। आस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सरतऊ ना पूजै, मने न की जय रोस, जमै ना दी जय दोस। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय, जथ रथ राय नंद, राजा मेरा राम चंद। प्रणवै नामा तत्रस अमृत पीजै, राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िय गुनिय नाम सब सुनिय, अनपौ पाओ न दर्श। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारस नाम परस। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते। एह बुद्ध कबै ना नासी, कहो रविदास समय सबै नहीं समझस। भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसै कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहा निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबद्या नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगमया पारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रहै सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै। बीज मंत्र लै हृदय रहै, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया भाखै, पांचों इंद्री बस कर रखै। गुर की साखी राखै चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बीचारे, अपना जन्म न जुवै हारे। असर नदी का बंदै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर। अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यों गोष्ठ करै। चौ मुख दीवा जो द्वार, पलू अंत मूल विचकार। सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नाम गुहै। मस्तक पद्म द्वालै मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचै तेरा नाम। राग नट नारायण।

गए मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो प्रभ एको पुरख निरारे। सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उरतारे। हर हर कथा बनियत मीठी ज्यो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे अत फीके लोभ बेकारे। जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे मेरे ठाकुर के जन प्यारे। सास सास सास है जेते मैं गुरमत नाम समारे। सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बेकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी मोको हरजन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा राम हम पाथर निर्गुणियारे। कृपा कृपा कर गुरु मिलाए हम पहन शब्द गुर तारे। रहाओ सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा मैला गर्म लगारे। ना मैं सुरत वजी है दय दसो हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे। गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिया संको तारे। सतगुर मिलिया परम पद पाया हो सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर भरमे लोभ पाखंड जग बुरियारे। हलत पलत दुखदाई होवै जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवै दिन सियाल जल संभालै बिख माया के बिस्थारे। आई रहन पया सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे। कलर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारे। साग तनार सब पूख पुखाने दर ठांडे जम जंदारे। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी उतरे शब्द विचारे। जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारे। जगन्नाथ सब जंतर यो पाए नक खीनी सब नथ हारे। नानक प्रभ खिंचे तिव चलिए ज्यो भावे राम प्यारे। नट महला चौथा राम हर अमृत सर नावारे। सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको मिल कर मल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधकाई पढ़ सुबह गण को धारे। परसन परस पय कुबजा कहो लै बैकुंठ सिधारे। अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बोलारे। मेरे ठाकर कै मन पाए पावनी जम कंकर मार बेदारे। मानुख कथै कथ लोक सुनावै जो बोलै सो ना बिचारे। सतसंगत मिलै ता दृढ़ता आवै हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किश नाम सुमारे। जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डै पनिहारे। सागर स्योमन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। साकत बचन बिशुआ ज्यों डसी है तज साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लालन लाल गुलारे। जैसा रंग देह सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर सरन प्रभु रखवारे। ज्यों कुंचर तंदुए पकड़ चलायो करी ऊपर कड निस्तारे। रहाओ प्रभ के सेवक बहुत अत नीके मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभ सरदा भगत मन भावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरख एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकर रव्या सब ठाकर।

0: नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन धीरे।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी। रेडियो साई ब्रिंग्स टू यू एवरी डे द टीचिंग्स एंड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ लव ऑफ भगवान श्री सत्य साई बाबा।
2: नाउ ऑन रेडियो साई वी हैव सम डिवोशनल Christian music.